हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब रसूख। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज बीफ है बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-2266-6611। बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-2566-6560। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले अगला भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है नरेंद्र की आवाज में आप सुनते ही रहना।

आवास में ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अगला भजन जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा, हम आपको ले चलेंगे अनूप जलोटा जी की ओर। आज की इस भजन यात्रा के प्रोग्राम में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं खास सुंदर और सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में अब की बार पेश किया जा रहा है। मधु स्मिता की आवाज में आप सुनते ही रहना।

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार ब्रह्मा की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए सुंदर भजन बस प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारी की आवाज में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हमारी सभी सुनने वालों जो खासतौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख धन्यवाद और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

रेम कुमार की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए अपनी बार अनुराधा पोर्टवाल जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है शंकर महादेवन और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: ये भजन लता मंगेशकर और शंकर महादेवन की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle poeja.

फिल्म का नाम कर्स, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। फिल्म कर्स का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

रेडियो SBS की सरिये सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की ओर।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तुलसी कुमार एन राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। चले शान और महालक्ष्मी आयर की ओर।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में गाना बस पेश की गई शादी का लड्डू फिल्म का नाम रेडियो SBS की जरिए गाना भी आपने सुना।

रेडियो SBS की जरिए सुनिधि चौहान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

प्रोग्राम आप सभी सुनवालू की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। नए नए महीना का शुरुआत हो गई है, तो आप सभी सुनवालू को ये नए नए महीना जो है अक्टूबर महीना, आप सभी को बधाई हो, मुबारक हो, ताकि ये महीना जो है आप सभी के लिए खुशियां ही खुशियां लाए।

तो चले यहाँ से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ।

0: सभी को अनहेल खुदमोर्गे गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। चले पहला पुरानी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में बस पेश किया जा रहा है।
1: दिन है तो

मान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: राधा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

एक तारीख अक्टूबर है, सभी को ये नए नए महीना लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को वेलकम गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। देश विदेश में सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम। आज का मौसम सुबह के वक्त भीजा भीजा सा मौसम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता झूड़ा मौसम होने वाले है। 030-22-66-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर होता है। बॉम्बे का बाबू फिल्म का नाम मोहम्मद रफी एंड आशा।

बॉम्बे का बाबू, फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत से सुनने वालों है जो स्टूडियो की ओर तार किया है, तार कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा साथ देते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। एक सुनने वालों है जो ये खास गाना बस सुनना चाहते हैं, काफी प्यार भरी गाना है, तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

0: भाई सपना इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब?
1: जब तुम चले जाओ

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फिल्म बुलेट, उसी फिल्म का गाना लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। अलकमार शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं। कमला अलकमार शहर के अंदर में हमारा ये प्रोग्राम को सुनते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हमें ऐप द्वारा खबर किया है कि इस वक्त हमारा ये पुरानी संगीतों का प्रोग्राम जो है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आपको भी गर्मा गर्म कॉफी के साथ, चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। पितरक शहर के अंदर में श्रीमती यानी महेश भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है और श्रीमती यानी महेश को भी एक खूबसूरत सुहाना दिन और ये नई नई महीना भी आपको भी बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आपको भी स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर होगा प्रोग्राम में। फिल्म का नाम ब्रह्मचारी।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारा प्रोग्राम भी रिकार्डो गफूर खान भी सुनते हैं बरेडा शहर के अंदर में। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम बरेडा शहर में जरूर सुनते ही रहना रिकार्डो गफूर खान। उरन खटोला फिल्म का नाम होगा।

0: देखो देखो टूटना चूड़ी नहीं है मेरा।
1: आज तो फिल्म गैम्बलर किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में 8:30 यानी कि 8 मिनट वेटेड हो चुका है सुबह 9:30। महेंद्र कपूर और लता होगा प्रोग्राम में, जिसके सपने हमें रोज आते रहे। महेंद्र कपूर और लता जी।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको मालूम होंगे लेकिन फिर भी हम आपको खबर करना चाहेंगे, जो लोग टिकट नहीं खरीदा है, सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण और तृतीया नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है रोटरडम RTM स्टेज, रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। अपना टिकट आप खरीदिए i-tickets.com वेबसाइट पर, उसी वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं और उसी वेबसाइट पर आप देखेंगे कि टिकट कितनी जोर तोड़ से बिक रहा है। रोजाना आप जाकर देखेंगे कि कितने टिकट बिक चुका है उदित नारायण और आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट का टिकट जो है, बस मिलकर देखेंगे सोमवार 15 नवंबर रोटरडम आहोई में उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट। एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है, अपना टिकट आप जल्द से जल्द जाकर खरीदिए i-tickets.com वेबसाइट पर। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और वो भी पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में, रामू तो दीवाना है फिल्म का नाम।

द माइटी मुकेश के आवाज में गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीट है। फिल्म रामू तो दीवाना है, उसी फिल्म का गीत आपने सुना और काफी पसंद किया है। एक बार फिर से द माइटी मुकेश तीसरे कसम फिल्म का गीत पेश होगा।

0: गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म तीसरी कसम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। टेम्स रेव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। किशोर और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना आप आए बाहर आए, किशोर एंड लता।
1: कैसा कैसा

को फॉलो करते ही रहना रेडियो SBS का। आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 1 अक्टूबर का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म अदालत का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना।

सुनवालू रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए मोबाइल के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

वेबसाइट पर तरह तरह के खबरें होते हैं, मौसमी समाचार और अपना दख हॉरोस्कोप आप जाकर देख सकते हैं और तरह तरह के खबरें होते हैं उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं सीधे स्टूडियो की ओर। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना पेश किया जाएगी। हमारा प्रोग्राम इस वक्त फोर्ट ब्यूरक शहर में सोया सोया भी सुनते हैं। सोया आपको भी नहील खुद मोर्ख गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आपको भी स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। और मुझे मालूम है कि ये गाना आपको काफी पसंद है, मोहम्मद रफी एनाशा, फिल्म का नाम प्रोफेसर प्यारेलाल।

एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरे गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। हमारा फेवरेट एक्टर जो है धर्मेंद्र का फिल्म है, फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। आसरो मीठे गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। हमारे सुन वालों जो है ऐप पर खूब हंसी मजाक करते हैं और तार कर रहे हैं स्टूडियो की ओर, फिर भी हंसी मजाक करते रहते हैं। शुक्रिया आप सभी के तार के लिए और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। लता मंगेशकर प्रोग्राम में फिल्म जब जब फूल खिले, ये शमा शमा है प्यार का।

0: जब जब भूल खिले फिल्म का नाम, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 4 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 10 बजे में रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक फिल्म की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम सीता और गीता, हेमा मालिनी का डुप्लीकेट मूवी है, साथ में धर्मेंद्र और संजीव कुमार काम किया है, आशा भोसले एंड द मैन विद द क्वीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में ये गाना ओ साथी चल, फिल्म सीता और गीता।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभालना,
1: हवा के साथ साथ

कि हीरा मुझे मिल जाए, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में फिल्म हीरा पन्ना, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फरमाई से हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामों का जो आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में, आपकी हर एक कामों का जो है किया जा रहा है। फरमाई से 5 यूरो पर फरमाइश, एक फरमाइश सिर्फ 5 यूरो में पेश किया जा रहा है। विवाह शादी सालगिरह जन्मदिन मुंडन संस्कार की फरमाइश से हुआ 5 यूरो पर फरमाइश, और आपकी तमाम खबरें तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में, मतलब होते हैं फरमाइशें और रिक्लाम रेडियो SBS के जरिए सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है। जरूर एक बार इन्फो आप लीजिए, और वो भी तार के जरिए। टेलीफोन नंबर कंतूर का 03-265-65-60। मेल भी आप कर सकते हैं या तो रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं 24 घंटे। अपना मोबाइल टेलीफोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर, और उसी वेबसाइट की जरिए बस मेल और ऐप भी आप कर सकते हैं।

ठीक 12 बजे प्रोग्राम में फरमाई से होगा, रेडियो SBS की जरिए और फरमाई से पेश किया जाएगी। माता श्री मखदा नुंदा राम खेलावन के लिए उत्तराखंड शहर की रहने वाली है। तो कल दिन में 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाई से जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS लाइव फनाउट हट फन नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड चमकता हुआ एक ही सितारा। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक।

0: मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई।
1: ये क्या गाना बजाना कुछ पागलों ने महफिल।
0: बस हमारी सुनने वालों जो है खूब हंगामा किया है, हमारा रेडियो SBS का ऐप पर खूब डांस कर रहे हैं। खूबसूरत गाना जो पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में, गाना भी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए। आशा उम्मीद है कि आपको भी गाना काफी पसंद आया है। चरित्रक से रेडियो SBS का प्रोग्राम 41 साल से ज्यादा बस पेश किया जा रहा है। मेरदान एगन फिर तैयार हो चुका है रेडियो SBS का प्रोग्राम, शहर यूट्रेस्ट से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है, उदित नारायण और आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट सोमवार 15 नवंबर पेश होने वाले हैं, और वो भी रोटरडम आहोई में। अपना टिकट आप जाकर खरीदिए iStreetTickets.com वेबसाइट पर। हमने अपना टिकट को खरीद चुके हैं, आप भी जाइए अपना टिकट खरीदिए और मिलजुल कर देखेंगे बाप और बेटे का कमाल रोटरडम आहोई सोमवार 15 नवंबर। iStreetTickets.com वेबसाइट पर अपना टिकट आप जाकर खरीद सकते हैं। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार। एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है, मूवी का नाम पराया धन, 1971 का फिल्म पराया धन फिल्म का नाम। आज उनसे पहली मुलाकात होगी।

आवास में ये गाना बस पे इसके गए आज उनसे पहली मुलाकात होगी। सुन वालों आपको मालूम होना चाहिए आज भी बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 1 अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, अक्टूबर महीना शुरू हो गए है, आप सभी को मुबारकबाद और बधाइयां पेश किया जा रहा है इस नए महीना का। एक गाना और प्रोग्राम में, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में रूना लैला होगा।

आखिरी पुरानी फिल्म का गीत बस पेश किया जा रहा है रूना लैला की आवाज में। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम कल शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक जरूर फिर से सुनते ही रहना। आज शाम में 2 बजे से लेकर के और 3 बजे तक पुरानी नगमे भी हमारे आखिरी घंटे का प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। इस गाना के बाद खबरें पेश होगा, खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ऐ हसीनों।

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना। आज की

चले प्रोग्राम में अगली बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो एसपीएस की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई विशाल मिटुन और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो एसपीएस की जरिए ये खास गाना जो पेश हुआ है।

इतना भूज की आवाज में ये गाना पेश की गई सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुन वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325 65 65 60 पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। नया फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म का एक गाना भी

विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गए बागी नंबर 3 से अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है।

रेडियो SBS की सरिये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए अब की बार उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

जी का गीत पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0362656560। जुबिन और नीति मोहन प्रोग्राम में

0: सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। चले आपके बार ये गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। भूमि फिल्म का नाम है।
1: तारीफों के पुल बांध रहे हैं होने वाले मियां के, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

एम जूनिता गांधी की आवाज में ये गाना पेश की गई अर्ध फिल्म भूमि एस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन लाइव शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अभी बार फिल्म बागी, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म बार बार देखूं। अरबान मलिक और नीति मोहन प्रोग्राम में सौ आसमान गाना कबूल है। आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

अरे सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में जुबिन एंड पलक के आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है इश्क फॉरएवर फिल्म का नाम।

पलक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं अतीफ असलम की आवाज में जो अब की बार पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: यूएसबी इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एडो फिल्म हमको तुमसे प्यार है उसी ये फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से उदित नारायण प्रोग्राम में हमारा फिल्म का नाम
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का।

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा रहा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। उदित नारायण की आवाज में आई फिल्म हमराज उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चले कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

है तो फिल्म क्या कहना, अलका याग्निक एंड सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए सोनू निगम और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए तो फिल्म क्यों हो गया ना, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए जेम्स की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। चलिए गाना शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

एंड हमारे ये ख्वाब तुम्हारे फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। जरूर आप सुनते ही रहना मुकेश और गीता दत्त की आवाज में।

सौरे की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मोहम्मद रफी एंड आशा जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए आपकी हर एक कामों काज के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-66-11। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में चल चल रे मुसाफिर चल।

0: एक दिन मेरे प्यार को।
1: मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म में फिर वही दिल आया हूँ, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा जी की आवाज में ये गाना बस सुनते ही रहना।

सुनो बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल, दी फा हार्ट वेलकम हेट इन द प्रोग्राम गीतों के लहर। विल रिएक्शन कैन इट ऑलवेज सर्फ माय द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इस किस्म तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद देख लीजिए क्वाम ऑफ द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। खामदा फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu, jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

ये नयन दरे दरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से, वो शाम कुछ अजीब थी।

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचने की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

तुझ में क्या है दीवाने, खसांद और किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर kwam uit de film बड़े दिल वाले. हाँ, तो फेर्दर मेट uit de film मलंग. हमरा इस लीचे.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे।

वास्तविक फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। इसके सॉन्ग दौर उदित नारायण एंड अलका याचिक। इन प्रोग्राम गीतों के लहर से फोहत लीजिए बंधु मेरा द फिल्म जवान जाने बन।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

0: छोटे मियां लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑप हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवेंट वोल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: सोंदा 15 नवंबर सोंदा 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय RTM स्टेज ट्वी जनरेशंस एन पोडियम एन अनफॉरगेटेबल अवेंट मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit Narayan.

मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। दित प्रार्थक लीजिए इस गजांग दो श्रेया घोषाल एंड कम आउट द फिल्म द बॉडी एंड हमने सुना है इस फोहत लीजिए विया रेडियो SBS आउट द फिल्म मेरे यार की शादी है गजांग दो उदित नारायण अलका याचिक सुदेश भोसले एंड जसविंदर ने रूला इस दित लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर।

संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को was uit de film नाराज en gezongen door Naksh Aziz komt het volgende liedje uit de film Gunjan Saxena. रेखा और रेखा.

गुर नालो इश्क मिठा इस आर द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एन गजोंग दोर लता मंगेशकर कॉम्ट आर द फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।